0: सुनो 91.7 FM कदर्स फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो सुनो.
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है